0: ये है लाइका रेडियो टीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
0: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
3: Leica Radio.
0: Easing you through the night with London's biggest.

0: Radio. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
1: Atif Aslam live in the UK.
2: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
3: बजट टाइट पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Leica Radio

0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती सन

तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत ना पाया नदियां

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

राहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरासा।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: Disco on Brekkie. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Why are you abseiling down the front of your house, Ross? You have a staircase.
3: I like doing things the hard way, Albert.
2: Try something easier, Ross. Get cheaper off-peak energy. It's available at different times, like during the day or weekends. Just get a smart meter and choose a flexible scheme or tariff.
3: Ooh, I could batch cook some quiche.
2: Perfect. With a smart meter, getting cheaper energy is easier than you think.
4: Eligibility varies. Action required. Schemes and tariffs available to selected customers.
5: फिफ्टींथ मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका. कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग. पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में.
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
6: इंट्रोड्यूसिंg Greens by Tanyo, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
7: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
6: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
7: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
6: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
12: गारंटेड.
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
12: फोन 0208574 8410.
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
13: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहो छे.
14: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रहो छे आ पवित्र यात्रा पर.
13: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
14: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे.
13: दर्शन पण अने यूरोप पण.
14: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
13: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स.
14: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. Wake up, feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
15: Like a radio.
0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किसी की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्य थी भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर, कॉमेडी क्वीन लेडी अमिता प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव। राइसलिप, अल्बर्टन, लूटन, पॉटर्स बार, फिंचली, साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन। हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज एज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 07957555226। वन इंचीज और टेक करीबूनी।
3: जी टीवी HD पर देखिए तुमसे तुम तक।
4: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
3: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
5: आर्यभट्ट थामर अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
4: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
3: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 App।
6: Two businesses.
7: Same town.
6: Same service.
7: One appears on page one of Google.
6: The other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question.
6: When your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. Apta bonded.
8: Mantra Holidays.
9: What's your travel mantra?
10: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
11: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
10: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
12: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
13: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, सारा दिन घूमते में बंद कुड़ी आसी, ओए सारा दिन घूमते में बंद कुड़ी आसी सपनों में मिलती है।
1: Hi Tony, today's gana is सपनों में मिलता है वो मुंडा मुझे सपनों में मिलता है
2: सच्ची नोई नोई सपने
3: लंबा कद है चौड़ा भी तो हद है दूर से दिखता है वो मुंडा मेरा
2: अच्छा
4: मॉर्निंग ब्रास्को द सॉन्ग इज सपने में मिलती है वो गुड़ी मेरे सपने में मिलती है सारा दिन घुंघटे में गुड़ी आसी सारा दिन घुंघटे में
2: I would have never have got that, you know.
5: Good morning, Donny. Today's line is Sapne mein milti hai O guri mere sapne mein milti hai
2: Hey, hey
5: Sapne mein milti hai O guri mere sapne mein milti hai
2: I just dream of samosa and tandoori chicken, man.
6: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun I know what it is, I know what it is. No, I'm kidding, I don't know what it is. I'm never...
7: Morning, Brasco. Today's gana is so easy.
2: Oh, what?
7: Sapne mein milti hai, o kudi meri sapne mein milti hai.
2: Hey, hey.
7: Sara din ghumte mein band padi aasi. Hoye, sara din.

सपना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था।

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: Disha Rice is available in all Asian grocery stores nationwide and Sony Cash and Carry, all Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira Cash and Carry, Southall, Dagenham Supermarket. Yes, Disha Rice.
1: Disha Basmati Rice.
0: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
2: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
3: Call 01923 883100. Atoll protected.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danu. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
11: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
12: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
13: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
12: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
14: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: flavours.
1: Oh, you want weight loss advice?
2: Weight loss? Actually, what you want to do
3: is... I got my weight loss secret from my mother, who got it from her mother's
1: My tip
4: weight
1: is,
4: loss? I
5: no, forget that. Never, you never,
4: just keep dancing.
3: Dragon fruit.
4: Podcast.
6: Advice.
7: Or you could go to MedExpress. MedExpress. Healthcare without the noise. Go to medexpress.co.uk/weightloss.
8: Ali 60 milligram hard capsules contain orlistat for overweight adults with a BMI of 28 plus. Follow a reduced calorie, low fat diet. Always read the label.
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person? Western Union is also available at participating post offices, Euro Change, and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
10: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
11: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
11: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
10: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
15: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
14: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
15: गारंटेड
14: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
15: फोन 02085748410
14: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
17: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे
18: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अन स्टार टूर्स तमने लई जाय आप पवित्र यात्रा पर
17: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
18: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
17: दर्शन पण अने यूरोप पण
18: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ही बुक करो स्टार टूर साथे
17: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
18: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
19: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
10: Next, Reload with Fishbert Naga.
20: Leica Radio, London.
10: 90s throwback plays now.
20: Leica.

0: की नजर
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
3: 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका कौन पत्नी कौन वो सवाल बहुत है आंसर्स और भी एंटरटेनिंग पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में

0: supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Karatino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Karatino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Karatino Better Ghee.
8: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-214.
9: 90s Throwback plays now.

0: और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
2: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
1: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
2: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
1: दर्शन पण अने यूरोप पण।
2: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
1: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
2: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
3: अल नूर, पुराना बाइतमात नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
4: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
5: Next, Radio Wally's Roller Coaster is up next.
6: On Leica Radio.
5: London. Raj Baden.

0: Swaroop Khan, Rajasthan ki Shaan, a former contestant on one of the singing reality TV shows, along with Shreya Ghoshal. Ghumar, what a beautiful choice. Chosen by Mahina. This is the Radio Wali. ये गाना ना मुझे घर की बड़ी याद दिलाती है जब भी मैं वापस राजस्थान जाती हूँ अपनी फैमिली से मिलने क्योंकि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान और जो जश्न तशन मनाते हैं और हम ये घूमर पे डांस जो करते हैं ना सच में घर की बहुत याद आती है और आज यू नो ये पूरा अभी ऑलमोस्ट मई खत्म होने को आया है नहीं मई खत्म तो नहीं होने को आया है मई शुरू हो चुका है शुड आई रेडियो वाली कैन यू बिलीव आई हैव नॉट बीन टू इंडिया टोल्ड दिस ईयर महीना तू बोल रही है कि तू अभी तक नहीं गई है आई हैवंट बीन टू इंडिया सिंस कोविड कैन यू बिलीव सिंस बिफोर कोविड दैट वाज द लास्ट टाइम आई वेंट टू इंडिया एंड आई वाज समबडी हु यूज्ड टू गो टू इंडिया एट लीस्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर अभी कुछ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि मैं इंडिया जा सकूँ अभी यू नो आप बोली है तो मुझे भी याद आ रहा है कि यार हाय कितने दिनों से वो बम्बई सैंडविच नहीं खाया पानी पूरी की कॉम्पिटिशन्स नहीं की दोस्तों के साथ वो यू नो लहरी के बैट पे बैठ के वो सब मस्ती नहीं की है बहुत दिनों से तो कैन वी मैनिफेस्ट दिस गाइस एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी कैन वी मैनिफेस्ट रेडियो वाली गेट्स टू गो टू इंडिया दिस ईयर बिकॉज इट्स बीन फार फार टू लॉन्ग बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग चॉइस दैट वाज घूमर
1: एसबीआई यूके मनी टॉक सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो एसबीआई यूके ऑनलाइन एंड वाया द एसबीआई यूके ब्रांच
0: So £1 in British sterling tonight will give you up to 129.1 Indian rupees. But remember, those transfers must be online, in store, or via the app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling tonight will give you up to 129.93 Indian rupees, 379.69 Pakistani rupees, 439.07 Sri Lankan rupees, 167.51 Bangladeshi takas, 87 Afghanis, and 1.35 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. The Takeover Hour.
0: So wherever you're joining us from tonight, Greater London or the Midlands, 14:58 AM, DAB Alexa. Google Home, LEICARadio.com. On that Leica Radio mobile app. Up sab ka swag se swagato. Mia, what a great song choice tonight. Piche Hat. When she first said that, she just wrote Piche Hat. And this is, sorry, Radio Ali, I'm not talking to you. That's my song choice.

0: in all Asian grocery stores nationwide and Sony Cash and Carry, all Sainsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira Cash and Carry, Southall, Dagenham Supermarket. Yes, Disha Rice.
1: Disha Basmati Rice.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: ETV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Event in Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner Leica Radio.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. The greatest Asian love.

0: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
1: 100% halal meat, prepared with care every day.
0: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
1: And don't forget, get your favourite frozen items too.
0: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
1: There is only one.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The sounds of love in London.